0: आप निरंजन सोए।
1: जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निदान।
0: गाविए सुनिए मां रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर लै जाए।
1: गुरमुख नादम गुरमुख वेदम, गुरमुख रहया समाई।
0: गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर।

0: संगे परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने
1: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीते गीते नमो तान ताने
0: नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे
1: अनंगी नामे समस्ती स्वरूपे पर पंगी पर माथे समस्ती स्वरूपे
0: कलांकंग बनाने ने कलांक स्वरूपे नमो राज रुजवेश व्यंग परम रूपे
1: नमो जोग जिगेश व्यंग परम सिद्धे नमो राज रुजेश्वर परम वृदे
0: नमो सतुर पाणे नमो असुर माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जगेश्वर परम जुगते
0: नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे
1: नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो भूप भूपे
0: नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमो सुन सनाने
1: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंतर जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग
0: सदा सच दान

0: त्रमुख त्रिभुत है पर भुगत प्रभा सुयुग तो सुधा है
1: सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साज है
0: समस्त सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है
1: ओगाध रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे
0: त्रवर्गन त्रवादे अगंजे अगाजे सुविंग सर्वभागे सर्व अनुरागे
1: त्रिभुक्त स्वरूप है चिज है छूत है के नरकंग पर नाश है पृथ्वी प्रवास है
0: निरुक्त सदा है निरुक्त सदा सदैव विकृत स्वरूप है पर जोगत अनूप है
1: निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है पर जोगत अनूप है
0: निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है पर जोगत अनूप है
1: चाचरी छंद
0: अपंग है अनंग है भेख है लेख है
1: अपर्म है कर्म है अनाद है जुगाद है
0: अजय है अभय है अभूत है अतूत है
1: अनाश है।

0: अनिल है अनाद है
1: नित्य नित नित है अजात है आजाद है
0: चरपट शांत व प्रसाद
1: सर्विंग हंता सर्विंग गंता सर्विंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता
0: सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग
1: सर्वंग कर्म सर्व धर्म सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता
0: रसावल शांत व प्रसाद
1: नमो नरक नाथ सदैविंग प्रकाशे अनंग सूपे अभंग बभूते
0: परमाथंग परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बभूते
1: अनंगे आमे तरभंगे तरकामे नरभंगे स्वरूपे

0: पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी
1: एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने
0: जबद कर करा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा
1: करक करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हो
0: जेते बदन सेठ सब तार है आप अपनी बुझ उचार
1: सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम
0: निरंकार निरंकार निलंब आद नील नाद संभ
1: जाको
0: पेव न पावत बेदा ताको कृपा अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत
1: महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव
0: आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती
1: तुम्हरा लखा न जाए पसारा केह वे सजा प्रथम संसारा।

0: सगरी शिष्ट दिखाए अचंभव आदि जगाद स्वरूप स्वयंभव
1: अवरक्षा मेरी तुम करो सिखो बारा सिख सुंगरो
0: सकल मलेश करो रण काता
1: यस्तु तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो है मरे
0: जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे
1: जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकटने आए हैं कृपा दृष्टि जाय न हर हो ताके दाव दनक मोह हर हो
0: सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह सब सके न कोई
1: एक बार जिन तुम्हें सबारा काल

0: जियो निर्मल बाहरो, निर्मल बाहरो त निर्मल जियो, निर्मल सतगुरु ते करनी कमाणी,
1: पूरकी सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी,
0: जन्म रतन जिनी खटिया भले।

का चाउ धन सो तेरा थान सबना सहरे वंजना सब मुकलावन हार नानक धन सुहागणी जिन सह नाल प्यार सज्जन सच्चा पातशाह

सती तेरी शिव सती साला सती तेरी कुदरत सती पातशाह नानक सच्चा सच्चा।

सत्यम संतोख उपज देने के विचार दे दी मुंगा सह सगुण शुभ कर संसार चोरा जा रहा कुड़िया रखा रबा वे कार चले दाऊ भी।

मोहन में गुत्ता क्यों जाके गुरबिन सूता पागो पेताना अपना किया कमाना आल मलकाई सच्चाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिन नाम है किस थाए न पाई रे बेबाणी मड़ी मसाणी अंदर जाना फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुप

राह लेखा कुआ बुझाहो क्या जिए करै काहे जी करै चतुराई लेवे देवे ढिल न पाई रहाओ तेरे जी जिया का तो क्या कहो साहिबा वै रोह जे तू साहिबा वै रोह तू ना का तेरा ओह असी बोल विगाड़ विगाड़ बोलो तू नदरी अंदर तो लै तो लो जै करनी तै पूरी मत करनी बाजे घट घट प्रणवत नान ज्ञानी कैसा होए आप छाणै बुझे सोए गुरु प्रगास करे विचार सुज्ञानी दरगाह प्रवान सी डाक महला पहला घर चौथा तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंतला जै जै देखा तै तै तू तू इत निकसी फूट मरा ना जाना मेो ना जाना जाली जान दुला कह तू जै संभाली रहो ना तू भरपूर जाना मैं दूर जो कुछ करी सु तेरे हजूर तू दे क्या कृपाओ तेरे कम ना तेरा नाए जेता दे तेता खाओ ब्यादर ना ही क्यादर जाओ नानके कह अरदास जियो पिंड सब तेरे पास आपे नेड़े दूर आपे ही मन आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंज में आनो आपे वेखे सुने आपे कुदरत करे जहानो।

पायो वेला हथ ने आवी अंत गया पछताए जिस नदर करे सो बरे हर से ती लिव लाए देखा देखी सब करे मन कूज न पाए जिन गुरमुख हर दा गुरमुख जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है सेव पई तिन थाए हर गुण गावे हर मित पड़े हर गुण गाए समाए नानक तिनकी बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिवलाए श्री राग महला तीजा जिनी एक मन नाम ते आया गुरमति विचार तिनके मुख सूझले ते सच्चे दरबार ओ अमृत पीवै सदा सदा सच्चे के गुण सच्चे नाम प्यारे भाई रे गुरमुख सदा पत होए हर हर नाम ते आइए मल होमे कड्डे धोए रहाओ मान मुख नाम न जाननी बिन्नावे पत जाए शब्द साधन आयो लागे दूजे पाए विष्टा के कीड़े पवच विष्ट से विष्टा माए सुमाए तिनका जन्म सफल है जो चल सद

प्राप्त हो ऐसा सदगुरु ऐसा सदगुरु लोड़ दो जिदू भाई सस होए असुर संगारे सुख से दो स्वभाव सो होए जी हाँ सतगुरु कर जा।

जहि रंग वरत हर गुण पावे सोए श्री राग महला तीजा काया सौद उतर उर तप करे विचो में जाए ध्यात्म कर्म जी करे नाम न कवि पाए गुरु कै शव जीवत मरे हर नाम से मणि आए सुन मन मेरे पासद गुरु शरणा गुरु प्रसादी छूटिए बिग पाव जले शब्द गुरु तरन रहाओ त्रैगुण सभा तात है दूजा भाव विकार पंडित पढ़े बंधन मोह बद नह बूझे विखिया प्यार सतगुरु मिलिए त्रिगड़ी छूटे चौथे पद मुख द्वार गुर ते मार्ग पाइए चूके मोक वार शब्द मरे ता हो उदरे पाए मुख द्वार गुर प्रसादी मिल रहे सच नाम करता रे हुन वात सब लैक चढ़न किते उपाय दूजे पाए दुख लाइंदा बहुती दे सजाए नानक नाम ले लगे से उबरे होमे शब्द जलाए श्री राग महला तीजा कृपा करे गुर पाए हर नाम दे दृढ़ाए बिन गुर किन न पायो बिरथा जन्म गुआए मानव कर्म कमा मुंदे दरग मिले सजाए मन मेरे दूजा भाव जुगाए ना अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए रहा सच बाणी सा शब्द है जां सच तेरे प्यारे हर का नाम मन वसे हुमे क्रोध निवार मन निर्मल नाम ते आईए ता पाए मोख द्वार होमे विच जग बिन सदा मरजन मेवा आवे जाए मन मुख शब्द न जाननी आजा सुन पत गवाए गुर सेवा ना पाई सच्चे रहे समाए शब्द मने गुर पाई विचो आव गवाए अन दिन भगत करे सदा सच्चे की लिवलाए नाम पदार्थ पाए नाम पदार्थ मन वसया नानक सह समाए श्री राग महला तीजा जिन्नी पुरखी सतगुरु ना सेवियो से दुखिए जुग चार कर हुंदा पुरख न पछानिया मान मुठे ओंकार सतगुरु क्या फिट गया मंग थके संसार सच्चा शब्द न सेवियो सबका सुवारण हार मन मेरे सदा हर वेख दूर जन्म मरण दुख पर हरे शब्द रहा भरपूर हाव सच सलाहन से सचे सच्चा नाम आधार सच्ची कार कमावनी सच्चे नाल प्यार सच सच्चा शाह वर्तदा कोई न मिटन हार मन मुख मैल न पायनी कूड़ मुठे अंकाव कुड़ियार होमे करता जग मुआ गुर बिन घोर अंधार माया मोह विसरिया विसरिया सुख दाता दातार सतगुरु सेवाया ता उबर सच रखे उतार कृपा ते अर पाईए सत शब्द विचार सतगुरु सेव मन निर्मल होमे तजे विकार अपना आप छोड़ जीवत मरे गुर के शब्द विचार धंधा तावत रह गए लागा सच प्यार सचर ते मुख उजले ती सचे दरबार सत गुर पुरख सत गुर पुरख न मन्यो।

0: नानक पूजे हर हर देवा
1: हर हर जन के मालिक जीना
0: हर तन जन को आप प्रभ दीना
1: हर हर जन के ओट सतानी
0: हर प्रताप जन अबर न जाने
1: ओत कोत जन हर सराते
0: सुन स्वाद नाम रस माते
1: पैर जन हर हर जपे
0: हर का भक्त पर नहीं छपे
1: हर की भक्त मुक्त भो करे
0: नानक जन संकेते तरे
1: मार जाते हर को नाम
0: काम तेन हर हर गुण गाम
1: सबते उत्तम हर की कथा
0: नाम सुनत दर्द दुख लथा
1: नाम की महिमा संत रिद बसे
0: संत प्रताप दुर सब नसे
1: संत का संग बड़ पागी पाइये
0: संत की सेवा नाम ते आइये
1: नाम तुल कुछ अवर ना होइ
0: नानक गुरमुख नाम पावे जने कोए श्लोक
1: बहु शास्त्र बहु सिमरती
0: देखे सर्व ढंडोल
1: पूजस नाही हर हरे
0: नानक नाम अमोल अष्टपदे
1: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान
0: हर शास्त्र सिमरत बख्यान
1: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया
0: सगल त्याग मन मध्य फिरया
1: अनेक प्रकार किए बहु जतना
0: पवन दान हमें बरतना
1: शरीर कटाई हमें कर रात

0: ശാസ്ത്രീസർത്തിവേ
1: മൈഹൂമതപരാണ
0: സോച
1: കരേ ദിൻ സാത
0: മന കീ മേള ന തന്തേ ജാത
1: കോ ബോ സാധന കരേ
0: മാതേ കബൂ ന ബിഖ്യാ ടരേ
1: ദോവേ ബോ ദേ അനീത
0: സുധ കാം ഹോയ കച്ചി പീത
1: മന ഹർ കേ നാം കീ മഹിമാ ഊച
0: നാനക നാം ഉദരേ പതിത വ മൂച
1: സ്യാന ജം ക പോ വ്യാപേ
0: ആർക്ക അതനകാര ദേശ നാ തരപേ
1: ਨੇਕ ਅਗਨੇ ਬੂਝੇ
0: ਕੋਟ ਪਾਦਰ ਕੇ ਨੀ ਸਿਜੇ
1: ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਉਬ ਪਿਆਲ
0: ਮੋਏ ਵੀ ਆਪੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ
1: ਅਮਰ ਕਰਤੂਤ ਸਕਲੀ ਜਮਡਾਨੇ
0: ਗੋਬਿੰਦ ਪੰਜ ਬਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਦੁਖ ਜਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ
1: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ
0: ਸਾਧ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ
1: ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਟਾਵੇ
0: ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸੰਤ ਗਾਵੇ
1: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੇ
0: ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹੋਮੇ ਸ਼ੋਰੇ
1: ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੇ
0: ਸਾਧ ਜਨ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ
1: ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਬਲ ਬਲ ਜਸਾ
1: ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ
1: ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ
0: ਸੋ ਕਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ
1: ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ
0: ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ
1: ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਟਾਨਾ
0: ਵੇਖੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ
1: ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ
0: ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲਿਪਾ
1: ਤਨ ਕੋ ਤਨ ਤੇ ਰੋ ਨਾ
0: ਨਿਥਾਮੇ ਕੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਥਾਉ
1: ਨਮਾਣੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਰੋ ਮਾਨ
0: ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸਵਾਮੀ
0: ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
1: ਆਪਣੀ ਗਤਮਤ ਜਾਨੋ ਆਪੇ
0: ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਤੇ
1: ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਅਬਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੋਏ
1: ਸਰਵ ਧਰਮ ਮੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ
0: ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ
1: ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੇ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਮਨ ਹਿਰਿਆ
1: ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੇ ਉਦਮ ਭਲਾ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ
1: ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ
0: ਹਰ ਕੋ ਜਲ ਸਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੇ
1: ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਮ ਥਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਜੇ ਘਟ ਵਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ
1: ਨਿਰਗੁਣਿਆ ਰੇ ਆਨਿਆ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਨ
1: ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਜੀਤ ਰੱਖ
0: ਨਾਨਕ ਨਿਭਿ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ
0: ਕਮਲ ਮੂਲ ਤੇ ਕਮਲ ਦਿਸਤਨ
1: ਜਿੰਤੂ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ
0: ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਵਾਰਿਆ
1: ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ
0: ਪਰ ਜੋਵਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ
1: ਵਿਆਹ ਉੱਪਰ ਸਾਕ ਸਹਿਨ
0: ਮੁਖਿਆ ਵਿਆਹ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਨ
1: ਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨ ਬੂਝੇ
0: ਬਾਖਰੇ ਉਤੋ ਨਾਨਕ ਸਿਜੇ
1: ਬਰਸਾਤ ਅਰ ਉੱਪਰ ਸੁਖ ਵਸੇ
0: ਸੁਤ ਪ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਬੰਤ ਸੰਗ ਹਸੇ
1: ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲ
0: ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵ ਕਾ ਮੂਲਾ
1: ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੇ ਸਭ ਰਸਾ
0: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ
1: ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰ ਨਿਤ
0: ਰਸਨਾ ਜਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ
1: ਸੇ ਦੂਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ
0: ਨਾਨੇ ਕਾਲ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ
1: ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ
0: ਇਸੋ ਪ੍ਰੀਤਨਾ ਕਰੇ ਗਵਾਰ
1: ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੇ
0: ਤਾਂ ਸਿਓ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇ
1: ਜੋ ਠਾਕਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
0: ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਧਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ
1: ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੇ ਦਰਗੇ ਮਾਨ
0: ਜਿਸੇ ਪਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਜਾਨ
1: ਸਦਾ ਸਦਾਇਓ ਪੂਲਣ ਹਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ
1: ਤਿਆ ਕੌਡੀ ਸੰਗਰਚ
0: ਛੋੜ ਛੋੜ ਸੰਗ ਮਾਚੇ
1: ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਸਥਰ ਕਰ
0: ਮਾਨੇ ਜੋ ਹੋਵਣ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੇ
1: ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸਰਮ
0: ਕਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੇ
1: ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੇ ਤੋਈ
0: ਗਦ ਪ੍ਰੇਤ ਪਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ
1: ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਬਿਕਰਾਲ
0: ਨਾਨੇ ਕਾਲ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ
1: ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ
0: ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਪੇਕ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਏ
0: ਸ਼ਬ ਸ਼ਨਾਏ ਕੁਛ ਕਰੇ ਛਪਾਇਆ
1: ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੇ ਲੋਭ ਸਮਾਨ
1: ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾ
0: ਕਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਥਾ
1: ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ
0: ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ
1: ਨੰਦਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ
0: ਕਰ ਗਿਓ ਲਿਓ ਉਣ ਬਹਾਵੇ
1: ਕਹਾਂ ਬਚਾਰਤ ਬੂਝੇ ਡੋਰਾ
0: ਜਿਸਕੇ ਯੇ ਤੋ ਸਮਝੇ ਪੂਰਾ
1: ਕਹਾਂ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੇ ਗੁੰਗ
0: ਯਤਨ ਕਰੇ ਪਾਵੇ ਸਰਪੰਗ
1: ਕੈ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਪਵਨ
0: ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਵਾਸ ਗਵਨ
1: ਤਾਰ ਕੋ ਨਾਮੇ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ
0: ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੇ
1: ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਸੋ ਆਵੇ ਨ ਚੀਤ
0: ਜੋ ਵੈ ਰਾਏ ਤਾਂ ਸਪ੍ਰਿਤ
1: ਬਲੁਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਵਸ
0: ਅੰਧ ਤੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੇ
1: ਕਰ ਮਾਨੇ ਮਨੇ ਪ੍ਰਤੀ
0: ਕਾਲ ਨ ਆਵੇ ਮੂੜੇ
1: ਚਿਤ ਵੈਰ ਬ੍ਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ
0: ਝੂਠ ਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਤਰੋ
1: ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ
0: ਨਾਨਕ ਰੱਖ ਲਿਓ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ
1: ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ
0: ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ
1: ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ
0: ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇ ਰਹਿ
1: कोई न जाने तुमरा अंत
0: ऊंचे ते ऊंचा भगवंत
1: सगल समग्री तुमरे सूतर तारी
2: तुमते होए सुहागे अपारी
1: तुमरी गत मित तुम ही जानी
0: नानक दास सदा परवने श्लोक
1: दीन हार प्रभु छोड़ के
0: लागे आन सवाए
1: नानक कहू न सीझी
0: मेरे नामे पत जाए अष्टपते
1: दस वस्तु ले पाछे पावे
0: एक वस्त हर खोट गवावे
1: एक बीना दे दस भी हर ले
0: तो मुड़ा को कहां करे
1: जिस ठाकर से हो नाहीं चारा
0: ताको कीजे संत नाम सकारा
1: जाके मन लागा प्रभु बीचा
0: सर्व सुख कहो मन उठा
1: जिस जन अपना हुकम मनाया
0: सर्व सुख नानक तन पाया
1: अघंत साव अपनी देर
0: आस भेद भरते अंदर आस
1: अपनी मान कश बाहर साहूले
0: अज्ञाने मन रोष करे
1: अपनी प्रतीत आप ही खो
2: बहुत उसका विश्वास ना हो
1: जिसकी वस्तिस आगे राखे
0: प्राप्ति आज्ञा माने मथे
1: उसके चौगन करे निहार
0: नानक साहब सदा ध्यान
1: अनेक पात माया के हे
0: सर्वत होवे ज्ञान अनेत
1: की छाया से रंग लावे
0: ओ भेंट से ओ मन पछतावे
1: जल्दी से सो चलन हार
0: लापट रे होता है अंदर
1: जो लावे ने
0: ताको हाथ में आवे के
1: मन हर के नाम की प्री सुखदाय
0: कर कृपा नान काप ले लाई
1: मिथ्या तन तन कुठंब सवाया
0: मिथ्या होमे ममता माया
1: मिथ्या राजो वन तन माल
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्र
0: मिथ्या रंग संग माया पे खास्ता
1: मिथ्या त्रो मो अवमान
0: मिथ्या आप सुपर कार्थ गमान
1: भक्त साध की शरण
0: नानक जप जप जीवे हर के चरण
1: मिथ्या सर्व पर निंदा सुने
0: मिथ्या अस्त्र दर्प को
1: मिथ्या नेत्र पे खतपा त्रियार पाद
0: मिथ्या रसना भोजन स्वाद
1: मिथ्या चरण पर विकार को तावे
0: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
1: मिथ्या तने पर उपकार
0: मिथ्या वास लेत विकार
1: बिन बूझे मिथ्या सब पे
0: सब दे नानक हर हर नाम ले
1: मिथ्या साकत की यार
0: सात बिना के हो सुचा
1: मिथ्या नाम बिना तन अंध
0: मुखावन ता के दरगंध
1: बिन सिमरन दिन रहन मिथ्या बिहाय
0: एक बिना जो
1: गोविंद भजन बिन व्यर्थे सब काम
0: अर्पण के नारद धाम
1: तन तन तेजन जय कट वस्यो हर नाम
0: नानक ताहे बल बल जाओ
1: रहत अवर कुछ अवर कमावत
0: माने प्रेत मुखो गण लावत
1: निहार प्रभु परवीन
0: बार पेखना काहु पीना
1: तेसे आप न करे
0: आप जाप जन में मरे
1: जिसके अंतर बसे निरंकार
0: जिसके सिख तरे संसार
1: तुम पाने तिन प्रभु जाता
0: नानक जन चरण प्राप्त
1: बेंती पार ब्रह्म सब जाने
0: अपना किया आपे मने
1: आपे आप करतन वेरा
0: किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा
1: आप स्यान पर सगलते रह
0: सबको जाने आत्म की रह
1: जिस पावे तिस ले लड़ लाए
0: थान थंतर रह समाए
1: सो सेवक जिस कृपा करी
0: निमक निमक अपना नित हरि श्लोक
1: काम क्रोध अर लोभ मोह
0: बिनस जाए आमेव
1: नानक प्रभु शरणागति
0: कर प्रसाद गुरु देव अष्टपदी
1: जय प्रसाद शक्ति अमृत खाए
0: इच्छा कर को रख मन माने
1: जय प्रसाद बंध तन लावे
0: जिसको सुगत परम रत पावे
1: जय प्रसाद बसे सुख मंदिर
0: जिसे त्याए सदा मन अंदर
1: जय प्रसाद गृह संग सुख वसना
0: आठ पैर सिमरो तिस रसना
1: जय प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा त्याए त्यावण जोग
1: जय प्रसाद पाट पटंबर हटावे
0: जिसे त्याकत अवर लवावे
1: जय प्रसाद सुख से जस हुई
0: मन आठ पैर ताका जस का विजय
1: प्रसाद तो सबको माने
0: मुख ताको जस रसन बखाने
1: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म
0: मान सदा त्याए केवल पार ब्रह्म
1: ब्रह्मजी जब दर के मान पावे
0: नानक पासे नहीं कर जावे
1: जय प्रसाद अरो कंचन दे
0: लिबराहो तिस राम स्नेह
1: जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत
0: मान सुख पावे हर हर जस कहत
1: जय प्रसाद तेरे सगल शिदर टाके
0: मन शाने पर ठाकर प्रभु ताके
1: जय प्रसाद तुझको ना पहुंचे
0: मान सास सास सिमरो प्रभु
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे
0: नानक ताके भक्त करे
1: जय प्रसाद भूखन पहरी जय
0: मंत्र स्मृतियों आस की
1: जय प्रसाद असव हस्त सवारी
0: मंत्र प्राप को कहु नाम सारे
1: जय प्रसाद पाक मिलक तना
0: राख रोय प्रभु अपने मना
1: जिन तेरी मन वंत बनाई
0: उठत बैठ सत से ते आई
1: इसे आई जो एक अलख
0: है यहाँ हुआ नानक तेरी रखे
1: जय प्रसाद करे पुन बोदान
0: मन आठ पैर का तिसका ध्यान
1: जय प्रसाद तू चार व्यवहार
0: प्रभु को सास सास चितारे
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: सोपरा
2: प्रभ सिमरो सदा अनूप
1: जय बरसा तरिनी की जात
2: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
1: जय बरसा तेरी पत रहे
2: वर प्रसाद नानक जस कहे
1: जय बरसा सुनन करन नाद
2: जय बरसा पे खे बिस्माद
1: जय बरसाद बोली अमृत रस
2: जय बरसा सो सजे वसना
1: जय प्रसाद हस कर चले
2: जय बरसा पूर्ण फले
1: जय प्रसाद परम गत पावे
2: जय बरसा सो सहज सुनावे
1: ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो
2: वर प्रसाद नानक मन जागो
1: जय बरसा तू प्रगट संसार
2: जस प्रभ को मूल ना मनो विसार
1: जय बरसा तेरा परता
2: रे मन मूर्त ता को जाप
1: जय बरसा तेरे कार्य पूरे
2: तिसे जान मन सदा हजूरे
1: जय बरसा तू पावे साज
2: जय मन मेरे तू ता सिंहराज
1: जय बरसा सब की गत होए
2: नानक जाप जपे जप सोए
1: आप जपाई जपे सोना
2: आप गवाए सो हर मन गाओ
1: प्रभु कृपा ते होई परगा
2: प्रभु दयते कमल बगास
1: प्रभु सो प्रसन्न वसे मन सोए
2: प्रभु दयते मत उत्तम होए
1: निदान प्रभ तेरी में
2: आपो कछु न किन होए
1: चित चित लावो चित लगे हर नाम
2: नानक इनके कछु न हाथ श्लोक
1: अगम गाद पार ब्रह्म सोए
2: जो जो, जो कहे सुमुक्ता होए
1: सुन मीता नानक बिन बिन
2: साध जना की अचार्य कथा अष्टपति
1: साध के संग मुखु जल होत
2: साध संग मल सगरी खोत
1: के संग मिटे अवमान
2: साध के संग पर टे सो ज्ञान
1: साध के संग बूझे प्रभ नीरा
2: साध संग सब होतन वेरा
1: साध के संग पाए नाम रतन
2: साध के संग एक ऊपर जतन
1: साध की महिमा बरने कौन प्राणी
2: नानक साध की शोभा ब्रह्मा समाने
1: साध के संग अगोचर मिले
2: साध के संग सदा पर फुले
1: साध के संग आवे बस पंचा
2: साध संग अमृत रस पुंजा
1: साध संग होई सब की रे
2: साध के संग मनोहर बहन
1: साध के संग न तू तावे
2: साध संग अस्तर मन पावे
1: साध के संग माया ते पेन
2: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत
2: साधु के संग महापनीत
1: किस्यो नहीं पैर
2: साध के संग न भीगा पैर
1: साध के संग ना ही को मंदा
2: साध संग जाने परमानंद
1: साध के संग ना ही होता
2: साध के संग तजे सब आप
1: आपे जाने साध बढ़ाई
2: नानक साध प्रभु बने आई
1: साध के संग न कब हूं तावे
2: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस अगोचर लहे
2: साधु के संग अजर सहे
1: साध के संग बसे थान ऊंचे
2: साधु के संग महल पहुंचे
1: साध के संग दृढ़ सब धर्म
2: साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाई नाम निदान
2: नानक साधु के करवान
1: साध के संग सब कुल उदारे
2: साध संग साजन मीत कुटम निस्तारे
1: साधु के संग सोतन पावे
2: जे तंते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
2: साध के संग शोभा सुर देवा
1: साधु के संग पाप लाए
2: साध संग अमृत बन गायन
1: साध के संग सर्वथान गम
2: नानक साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कुछ काल
2: दर्शन भेटत होते हाल
1: साध के संग लुखत हरे
2: साध के संग नरक पर हरे
1: साध संग यहाँ वहाँ सहेला
2: साध संग विसरत हर मेला
1: जो इच्छे सोई फल पावे
2: साध के संग न व्यर्थ जावे
1: पार ब्रह्म साध रे दिवसे
2: नानक उदरे साध सुन रसे
1: साध के संग सुनो हर नाम
2: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग न मन ते विसरे
2: साध संग सर्प निस्तरे
1: साध के संग लगे प्रमीठा
2: साधु के संग कटर डीठा
1: साध संग पे आज्ञाकारी
2: साध संगत पे हमारी
1: साध के संग मिटे सब रोग
2: नानक साध पिटे संजोग
1: साध की महिमा वेद न जाने
2: जेता सुने तेता बखियाने
1: साध की उपमा तय गुण ते दूर
2: साध की उपमा रही परपूर
1: साध की शोभा का नाही अंत
2: साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा ऊंचते ऊंच
2: साध की शोभा मूंचते मूंचे
1: साध की शोभा साध बनि आई
2: नानक साध प्रभ भेद ना पाई श्लोक
1: मन साचा मुख साचा सोए
2: अबर न पेखे कस बिन कोए
1: नानक ए लक्षण
2: ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपति
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निरल

0: कृपा अंतर उतारे
1: प्रेम मगत पात्र को उतारे
0: सर्व रोग का उखद ना
1: कल्याण हो मंगल गुण गावे
0: काहू जुक्त किते ना पाइये धर्म
1: नानक ते सुने जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
1: जिसका नाम सत राम दास
0: आत्म राम तिस नदरी आया
1: दास सतन पाए तन पाया
0: सदा निकट निकट हर जान
1: सो दास दर गए परवाना
0: अपने दास को आप कृपा करे
1: दास को सब सोची परे
0: सकल संगात मोदास
1: ऐसे जुक्त नानक राम दास
0: प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे
1: जीवन मुक्त सो कहावे
0: तैसा हरक तैसा उसो
1: सदा नानते नहीं वियोग
0: तैसा स्मरण तैसी उसमाटे
1: तैसा अमृत तैसे विखाटे
0: तैसा मान तैसा अभिमान
1: तैसा रंग तैसा रह जान
0: जो बरताई साई जुक्त
1: नानको पुर के ये जीवन मुक्त
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ
1: ये जित का राखे तैसा तिन नाओ
0: आपे करन करावन जोग
1: प्रापा वे सोई पुन होत
0: पसरियो आप होई अनतरंग
1: रखन जाए पार ब्रह्म के रंग
0: जैसी मध्य तैसा प्रगाश
1: पार ब्रह्म का सब नाश
0: सदा सदा सदा दिया
1: सिमर सिमर नानक पै निहाल श्लोक
0: उस्तत करे अनेक जन
1: अंत न पार बार
0: नानक रचना प्रवरची
1: बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी
0: कई कोट होए पुजारी
1: कई कोट आचार बिहारी
0: कई कोट पै तीर्थ वासी
1: कई कोट बन ब्रह्म अदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते
1: कई कोट स्पीशर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान तारे
1: कई कोट कब का बिचारे
0: कई कोट नपतन नाम त्यावे
1: नाने करते का अंत न पावे
0: कई कोट पै अभिमानी
1: कई कोट अंध ज्ञानी
0: कई कोट कृपण कठोर
1: कई कोट पै आत्म नकोर
0: कई कोट पर दर्व को हिरे
1: कई कोट पर दुख ना करे
0: कई कोट माया शर्म माये
1: कई कोट पर देश पर माये
0: जित लावो तित तित लगना
1: नाने करते के जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प उपाय
1: कई कोट पाथर बिरख निपजाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंत
1: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट ससिये सूर नखत्तर
1: कई कोट देव दान इंद्र सर शतर
0: समग्री अपने सूतारे
1: नानक जिस पावे तिस निस्तारे
0: कई कोट राजस्तामस सातक
1: कई कोट वेद प्राण समर शाशत
0: कई कोट किए रतन समुद्र
1: कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चिर जीव
1: कई कोट गिरी में सुराम तिवे
0: कई कोट चक की नेर पीसा
1: कई कोट भूत रे सुकर मरगा
0: सब ते नेरे सभू ते दूर
1: नान का फल तेरे है भरपूर
0: कई कोट पताल के वासी
1: कई कोट नर सुरगन वासी
0: कई कोट जन्म में जीवे मरे
1: कई कोट भोजने फिरे
0: कई कोट बैठत ही खाए
1: कई कोट काले थक पाए
0: कई कोट किए तनवंत
1: कई कोट माया में चिंत
0: जय जय पाणा तै तै राख
1: नानक सत प्रभु के हते
0: कई कोट पे बैरागी
1: राम नाम संग तिन लिब लागे
0: कई कोट प्रभु को खोजनते
1: आत्म में पार ब्रह्म रहंते
0: कई कोट दर्शन प्रभु प्यास
1: जिनको मिल्यो प्रभु बनास
0: कई कोट मांगे सतसंग
1: पार ब्रह्म तिन लागा रंग
0: जिनको होए आप सो प्रसन्न
1: नानक तेजन सदा तन तन
0: कई कोट खानी अर खानी
1: कई कोट आकाश ब्रह्मांड
0: कई कोट होए अवतार
1: कई ज्योत की नौ विस्तार
0: कई बार पसरियो प्रसार
1: सदा सदा के कंकार
0: कई कोट की ने बौ पार
1: प्राप्त हो ब्रह्माय समात
0: कांत न जाने कोई
1: आपे आप नानक प्रभु सोए
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास
1: तिन होता तम प्रकाश
0: कई कोट तत के बेते
1: सदा निहारो एक हो नित्रे
0: कई कोट नाम रस पीवे
1: अमर पैसा सद ही जीवे
0: कोट नाम गुण गावे
1: आत्म रस सहज समावे
0: अपने जन को सा सा समारे
1: नानक होए परमेश्वर के प्यारे श्लोक
0: करण कारण प्रभु एक है
1: दूसरा नाही कोए
0: नानक तिस बलिहार ने
1: जल थल में अल सोए अष्टपदे
0: करण करावण करने जोग
1: जो दिस पावे सोई होग
0: में थाप उथापन हार
1: अंत नहीं कुछ पारा बारा
0: हुक्मे तार अधर रहावे
1: हुक्मे उपजे हुक्म सुहावे
0: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार
1: हुक्मे अनक रंग प्रकार
0: कर कर देखे अपनी बड़ियाई
1: नानक सब में रहा समाई
0: प्रभ पावे मान गत पावे
1: प्रभ पावे ता पत्र तरावे
0: प्रभ पावे बिन सास ते राखे
1: प्रभ पावे ता हर गुण पाके
0: प्रभ पावे ता पतित उदारे
1: आप करे अपन बेचारे
0: मसरिया का आप स्वामी
1: केले बिकसे अंतर जामे
0: जो पावे सो कार करावे
1: नानक दृष्टि अवर न आवे
0: मान ते क्या होए आवे
1: जो जिस पावे सोई करावे
0: इसके हाथ होए ता सब कुछ ले
1: जो जिस पावे सोई करे
0: अनजानत भिख्या में रचे
1: ये जानते अपने आप बचे
0: परमे पूला दे दिसतावे
1: निमक में चार कुंठ फिरावे
0: कर कृपा जिस अपनी भगते
1: नानक तेजा नाम मिले
0: हिन में नी

0: अष्टपदी
1: अविनाशी ब्रह्म मन में राग
0: मान की तो प्रीत त्याग
1: इससे परे नाही कुछ होए
0: सनन अंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गहिर ज्ञान
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा दान दयाल भगत संत
1: साथ तेरे की चरनी पाओ
0: नानक के मन एन राहो
1: मनसा पूर्ण सतना
0: जोग जो कर पाया सोई होगा
1: करण परन चाका नेत्र फोर
0: जिसका मंत्र न जाने होर
1: अंत रूप मंगल सद जाके
0: सर्व शोक सुनिय करता
1: राज में राज योग में जोगी
0: तब मैं विसर ग्रस में भोगी
1: आए त्याए पक्ते सुख पाया
0: नानक जिस पुर का किने अंत न पाया
1: जाकी लीला कीमत नाहे
0: सकल देव हरे अवगाहे
1: पिता का जन्म क्या जाने
0: सकल परोई अपने सूत
1: ज्ञान ध्यान जिन दे
0: जन दास नाम ते आवे
1: से में जाको परमाए
0: जन्म रे फिर आवे जाए
1: ऊंच नीच इसके स्थान
0: जैसा जन आवे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना फेक रे करंग
1: नाना विद कीनो विस्तार
0: प्रभनासी एक अंकार
1: नाना चलत करे खिन माए
0: पूरे ओ पूर सब ठाए
1: नाना विद कर बंट बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: सब कट तिसके सब तिसके ठाओ
0: जब जो जीवे नानक हरनाओ
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के तारे सिमरत वेद प्राण
0: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे घास पताल
0: नाम के तारे सगले कार
1: नाम के तारे पुरिया सब पवन
0: नाम के संग उदरे संसार
1: पर कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सोजन गत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान
0: और सत केवल प्रदान
1: करतूत सत सत जाकी बाणी
0: सत पुरुष माए समाणी
1: सत कर्म जाकी रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत्त
1: सत करनी निर्मल निर्मली
0: जिसे बजाए जिसे सफली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुरु ते पाए
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत जन जाके हृदय
1: प्रवेश नित बूझे जय कोई
0: नाम जब ता की गत होए
1: आप सत किया सब सत
0: आपे जाने अपने मित गत
1: जिसकी शिष्यो करने हार
2: अपन बोझ कर्त विचार
1: करते कीमत न जाने की
0: नानक ज्योति पावे सो भरतिया
1: विस्मन विषम पै विस्मार
0: जन बुझिया ते साया स्वाद
1: के रंग राजन रहे
0: गुर के वचन पदार्थ रहे
1: ओ दाते दुख काटन हार
0: जाके संग तरे संसार
1: जन का सेवक सो बड़ पागी
0: जन के संग एक लिब लागे
1: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे
2: वर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
1: आद सच जुगाद सच
0: हैपी सच नानक होसे पी सच अष्टपदी
1: चरण सत सत परसन हार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेखन हार
0: नाम सत सत ध्यान हार
1: आप सत सत सब धारी
0: आपे गुण कारी
1: शब्द सत सत प्रभु वक्ता
0: सत सत सजा सुनता
1: पूजन हार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभु सोए
1: सत स्वरूप हृदय जिन मानिया
0: कारण करावण तन मूल बुझानिया
1: जाके हृदय विश्वास प्रभु आया
0: सत ज्ञात स्मरण पढाया
1: बैते निरपो होए बसाना
0: जदे उपजा जिस माए समाना
1: बस्त माइले बस्त गडाई
0: ताको बिना कह न जाए
1: पूजे पूजन हार भवे
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकर के सेवक के मन प्रति
0: ठाकर के सेवक के निर्मल
1: ठाकर को सेवक जाने संग
0: प्रभु का सेवक नाम के रंग
1: सेवक को प्रभु पालन हारा
0: सेवक की राखे निरंकार
1: सो सेवक जिस ते आप प्रभु तारे
0: नानक सो सेवक सास सास मारे
1: अपने जन का परदाता के
0: अपने सेवक की सब रखे
1: अपने दास को दे बढ़ाई
0: अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आपत रखे
0: ताकि कदमत कोई न रखे
1: प्रभु के सेवक को न पहुंचे
0: प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाए
0: नानक सो सेवक दय पटाया
1: की कीरी में कल रखे
0: पासम करे राष्ट्र को ढलाखे
1: जिसका शासन काढ़त आप
0: ताको रख दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बहु पात
0: जिसके कथा मिर्थे जात
1: मारे न राखे अवर न कोई
0: सर्व जिया का राखा सोए
1: काहे सोच करे रे प्राण
0: जब नानक प्रभु आर्क बनाणे
1: बारंबार बार प्रभु जपिए
0: ही अमरते मन तंत्र पिए
1: नाम रतन जिन गुरमुख पाया
0: इसके सावन नाय दृष्टाया
1: नाम तन नामो रूप रंग
0: नामो सुखा नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्तानी
0: मन तन नामे नाम समाने
1: उठत बैठत सोबत नाम
0: और नानक जन के सतकाम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: पर अपने जन की निदाद
1: करे भक्त आत्म कह जाए
0: पर अपने सो रह समाए
1: जो हुआ हो वस्तो जाने
0: पर अपने का हुक्म पहचाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: जिसका गुण के एक न जानो
1: आठ पै प्रभु से हजूरे
0: ओ नानक से जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट ले
0: मन तन अपना तिन जन दे
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व थोक का दाता
1: जिसकी शरण सर्व सुख पावे
0: जिसके दर्शन पाप मिटावे
1: अबर सियान पे सगली शार
0: जिस जन की तो सेवा लाग
1: आवन जान न हो भी तेरा
0: नानक जन के पूजो सद पैरा श्लोक
1: सत पुरख जिन जानिया
0: सत गुर तिसका नाओ
1: तिसके संग सिख उदरे
0: नानक हर गुण गाओ अष्टपदी
1: सतगुर सिक्की करे प्रित पाल
0: सेवक गौर सदा दयाल
1: सिक्की गुर दुर्मत मल हिरे
0: गुर वचनी हर नाम उचरे
1: सतगुर सिक्के बंधन काटे
0: गुर का सिख पकाते हटे
1: सतगुर सिक्का नाम तंदे
0: गुर का सिख बट पाही है
1: सतगुर सिक्का हलत पलत सवारे
0: नानक सतगुर सिक्को जी नाल समारे
1: गुर के गृह सेवक जो रहे
0: गुर के आज्ञा मन में से
1: आपस को कक्ष ना जा ना जनावे
0: हारा नाम हृदय सत्य आवे
1: मन बीचे सतगुर के पास
0: तिस सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत होई ने कामी
0: तिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मत ले
1: जिस विश्व गुर का मन माने
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सतगुर जिस हृदय हर नाव
0: अनक बार गुर को बल जाओ
1: सर्व निदान जी का दाता
0: आठ पैर पार रंग रात्रा
1: में जन जन में पार ब्रह्म
0: एके आपने एक अश परम
1: सहस्यान प्लिया न जाई
0: नानक ऐसा गुरबट पागी पाई
1: दर्शन पे खत पनीत
0: पार्षद चरणत निर्मल रीत
1: बेट संग्राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दर्गे कवे
1: कर वचन करन अगाने
0: मान संतोख आत्म पत्याने
1: पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र
0: अमर दृष्ट पे खेव संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस पावे तिस लय मनाए
1: जीवाए कुस्तत अनेक
0: सतपुर पूर्ण भवे
1: कराहू बोल न पहुंचत प्राणी
0: अगम गोचर ब्रह्म निर्वाणे
1: मेरा हार निर्वैर सुखदाई
0: ताके कीमत किने न पाए
1: भक्त बंधन नित करे
0: जान कमल हृदय समरे
1: सत बलिहारी सतगुरु अपने
0: नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जने
1: हो हरस पावे जन कोए
0: अमृत पीवे अमर सोए
1: उस पुरख का नाही कदे बनार
0: जाके मन पर के गुणतास
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेश सेव को दे
1: मोह माया के संग न ले
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक परमे दुख ते
1: शब्द माए ठांड वरताई
0: आंध पिया दुख नाठे पाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेसे
1: चुका निरपा होय वसे
0: सगल व्याज मन देखे न से
1: जिसका सातिन कृपा तारी
0: संग जप नाम मरारे
1: पाई चूके प्रभु गमन
0: सुन नानक हरा जा सरवण
1: गुण आप सरगुण भी ओही
0: कला का दिन सगली मोए
1: अपने चित प्रभु आप बनाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोए
0: सब निरंतर एको सोए
1: पोत पोत रविया रूप रंग
0: पै प्रकाश साध के संग
1: रच रचना अपनी कल तारी
0: अनक बार नानक बलिहारी श्लोक
1: साथ न चाले बिन भजन
0: देखा सगली शार
1: हर हर नाम कमावना
0: नानक तन सार अष्टपते
1: संत जना मिल हर करो विचार
0: एक सिमर नाम आधार
1: पावो समीत बसार
0: चार कमरित में और तार
1: करन कारण सो प्रभ समरत
0: दृढ़ काओ नाम हर बात
1: यो तन सुनचो हो वो भगवंत
0: संत जन का निर्मल मंत्र
1: एक आस रखो मन माए
0: सर्व रोग नानक मिट जाए
1: जिस तन को चार
0: सो तन हर सेवा ते पावे
1: जिस सुख को नित बाछे मीत
0: सो सुख साधु संग प्रीत
1: जिस शोभा को करे पली करनी
0: सा शोभा पज हर की सानी
1: अनेक पावी रोग न जाए
0: रोग मिटे हर हर दलाए
1: सर्व निदान में हर नाम निदान
0: जब नानक दरगे परवाना
1: तो हर के नाय
0: जैसे ताप था बैठाए
1: ना को बिगन न लागे कोई
0: जाके हृदय बसे हर सोए
1: शांति ठंडा हर नाम
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ
1: गोविंद से पूरन होए आस
0: भक्त पाए आत्म प्रकाश
1: चित कर जाए बसे अब नास
0: को नाने काटे जम फसे
1: तत विचार कहे जन सच
0: जन मरे सो काचो काचा
1: आवा गमन मिटे प्रभ से
0: आप त्याग सन कर देव
1: नौ रतन जन्म का होए आधार
0: हर हर सिमर प्राण आधार
1: पावन छूटन
0: सिमर शास्त्र वेद बिचारे
1: हर की भक्त करो मन लाए
0: मन बाचन नानक फल पाए
1: संग न चालस तेरे तना
0: तू के पटावे मूर्ख मना
1: मीत कुटुंब अरबिंता
0: इनते को
3: ਗੌਤਮ ਕਮਲ ਸਨਾਥ
1: ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ
3: ਨਿਤੇ ਕਉ ਕਮਲ ਛਟਕਾਰ
1: ਸਸਤੀ ਰਥ ਸਵਾਰੀ
3: ਰੁਠਾ ਡੰਪ ਝੂਟ ਪਰ ਸਾਰੇ
1: ਜਿੰਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਝੇ ਨ ਬਗਾਨ
3: ਨਾਮ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨ
1: ਕੀ ਮਾਤੂ ਲੇ ਆਨੇ
3: ਭਗਤ ਬਨਾ ਵੋ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਨੇ
1: ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ
3: ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਜੀਤ
1: ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ
3: ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਨ ਵਿਖ ਜਾਏ
1: ਆਪ ਜਪੋ ਅਬਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ
3: ਸੁਣਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਕਥ ਪਾਵੋ
1: ਸਾਰ ਪੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ
3: ਸਹਿ ਸਵਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵ
1: ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ
3: ਬਿਰਸ ਜਾਏ ਹਮੇ ਬਿਖ
1: ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬਸੇ ਸੁਖ ਨਾਲ
3: ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ
1: ਛਾੜ ਸਿਆਨ ਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ
3: ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੇ ਸਚ ਤਨ
1: ਹਰ ਕੁੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ
3: ਸੁਖ ਦਰ ਗਏ ਜੈਕਾਰ
1: ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ
3: ਕੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤ
1: ਕਲੇਖ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਲਾਹ
3: ਏਕ ਸਿਵਰੇ ਕੋ ਮਨ ਆਹੇ
1: ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵ ਅਨੰਤ
3: ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ
3: ਪੂਰਨ ਪੂਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪ
1: ਅਨਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਪੈ
3: ਏਕ ਅਰਾਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਏ
1: ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ
3: ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਏਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ
1: ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ
3: ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨ ਆਏ
1: ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ
3: ਆਪਣੇ ਭਗਤੇ ਲਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੇ
1: ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ
3: ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਸਾਧ ਜਿਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਤੂੰ
3: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇਰ ਸਰਦਾ ਪੂਰ
1: ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ
3: ਸਾ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਧਿਆਵੋ
1: ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੀਤ
3: ਪਾਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ
1: ਏ ਕੋਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ
3: ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ
1: ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ
3: ਅਰਥ ਪਾਵੇ ਮਿਲ ਲਾ ਕੋਏ
1: ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ
3: ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਨੇ
1: ਸੁਪਰ ਪਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ
3: ਉਪਜੇ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ
1: ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ
3: ਆਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨਿ ਬੁਲਾਗ
1: ਬੜ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
3: ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ
1: ਸੇਵ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਪਈ
3: ਸਤ ਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ
1: ਜਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਿਆਲ
3: ਸੇਵ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ
1: ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਪਿਆ
3: ਜਨ ਮਨ ਦੁਖ ਭ੍ਰਮ ਗਿਆ
1: ਗੁਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ
3: ਰਵਿਆ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਹਜੂਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਮਲਾਏ
3: ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ
1: ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਕਾਲ ਨ ਪਾਨੇ
3: ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੇ
1: ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਆ
3: ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ
1: ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖੇ
3: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਬਿਲ ਲਾ ਰੱਖੇ
1: ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਬਿਖ ਤੇ ਕਾਢੇ
3: ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢੇ
1: ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਤ ਇਹ ਬਜਾਇ
3: ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ
1: ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਏ ਕਾਮ
3: ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵ
3: ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ
1: ਭਗਤ ਪਾਏ ਤਰੀਏ ਸੰਸਾਰ
3: ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਸ਼ਾਰ
1: ਸਰਵ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਧ ਨਾਮ
3: ਮੂਲ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਨਾਮ
1: ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ
3: ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣ ਦਾਸ
1: ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ
3: ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੰਤਰੇ ਹੀ ਸੁਆਓ
1: ਨੇਤਰੋ ਪੇਖ ਦਰ ਸੁਖ ਹੋਏ
3: ਮਨ ਵਿਖੇ ਸਾਚਨ ਤੋਏ
1: ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ
3: ਮਿਲਾ ਕੋ ਪਾਵੇ ਸੰਗ
1: ਏਕ ਬਸ ਦੀਜੇ ਕਰਮਿਆ
3: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ
1: ਤਾਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ
3: ਨਾਨਕ ਰਿਹਾ ਸਰਗ ਸਮਾਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੰਦ ਦੀਨ ਦਿਆਲ
3: ਭਗਤ ਬਸਨ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ
1: ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ
3: ਸਰਬ ਕਟਾ ਕਰਤ ਬਿਰਤਪਾਲ
1: ਆਦ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ
3: ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ
1: ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪਨੀਤ
3: ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਵੇ ਮਨ ਹੀਤ
1: ਹਮ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ
3: ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਸ਼ਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ
1: ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ
3: ਏਕ ਨਿਮ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ
1: ਅਨਿਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ
3: ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਪਾਈ
1: ਭੋਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗੀਤ

0: हमारे
1: सोम हुआ जिसमानो सारे
0: तज अवर कहा को जाए
1: सबसे अंतरन जाए
0: जी की जुक्त जाके सब हार
2: अंतर बार जानो साथ
0: पुण्य दान भी अंत अपार
2: नानक दास सदा बलिहार
0: पूरन पूर रहे दयाल
2: सब पर होत कर पाल
0: अपने कर्तव्य जाने आप
2: अंदर जा मेरे हो आप
0: प्रीत पाले जियन बो पार
2: जो जो रचियो सो तिसे
0: जिस पावे तिस लय मलाए
2: बात करे हर के गुण गाए
0: मन अंतर विश्वास कर मानिया
2: नानक के ज्ञान
0: जल लागा हर एक के नाय
2: इसके आसन मृत्यु जाए
0: सेवक को सेवा बनियाई
1: हुकम भोज पर पद पाए
0: इसते ऊपर नहीं विचार
1: जाके मन से निरंकार
0: बंधन तोर पै निर्वैर
2: अंदर पूजे गुर के पैर
0: ए लोक सुखिए पर लोक सहेले
2: नानक हर प्रभु आपे मिले
0: सा संग मिल करो आनंद
2: गुण गावो पर परमानंद
0: राम नाम तत करो विचार
2: दुर्लभ देखा करो आधार
0: अमृत वचन हर के गुण गावो
2: प्राण तन का हे
0: आठ पैर प्रपेखे नेरा
2: ज्ञान मन से अंधेरा
0: सुन उपदेश दे बसावो
2: मन इच्छे नानक फल पावो
0: फलत पल दोलियो सवार
2: राम नाम अंतर अवतार
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया
2: जिस मन बसे ते साच परिखिया
0: मंतन नाम जपोले बलाए
2: दुख दर मन ते पौ जाए
0: सच व्यापार करो व्यापारी
2: करके ने बेखे तुम्हारी
0: एका टेक रखो मन माही
2: नानक बार न आवे जाए
0: दूर कहां को जाए
2: उमरे रखन हारते आए
0: निरपौ जपे सगल पौ मिटे
2: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे
0: प्रभ राखे तिस नाही दूर
2: नाम जत मन होत सुख
0: चिंता जाए मिटे हंकार
2: जिस जन को कोई न पहुंचन हार
0: ऊपर ठंडा गुर सूर
2: नानक ताके कार्य पूरा
0: मत पूरी जाके दृष्ट
2: दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ
0: चरण कमल जाके अनूप
2: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: तन सेवा सेवक परवान
2: अंतर जामी पुरख प्रधान
0: जिस मन वसे सो होत निहार
2: ताके निकट न आवत काल
0: अमर पै अमरा पद पाया
2: साथ संग नानक हर त्याया सलोक
0: ज्ञान अंजन गुर दिया
2: अज्ञान अंधेर बनास
0: हर कृपा ते संत पेतिया
2: नानक मन परगास अष्टपदी
0: संत संग अंतर प्रभ जीचा
2: नाम प्रभु का लागा मिटा
0: सगल समग्री एक स्कट माहे
2: अनक रंग नान नाद सुचाहे
0: नौनिद अमृत प्रभ का नाम
2: देही मैं इसका बसराम
0: समात अनहते नाद
2: जाइए चंद भी सुना दे
0: देखा जिस आप दिखाए
2: नानक जन जन सोजी पाए
0: तो अंतर जो बाहर अनंत
2: अटकट प्याप रिहा भगवान
0: माया काश प्याल
2: सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल
0: तीन पर्वत है पार ब्रह्म
2: जैसे आज्ञा तैसा कर्म
0: कौन पानी बै संतर माए
2: चार कुंडते तिसे सुमाए
0: इते पिन नहीं कोठाओ
2: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद प्राण सिमरत मैं देख
2: जैसे असुर नखत्र में एक
0: वाणी प्रभु की सबको बोले
2: आप ढोलना कहू ढोले
0: सर्व कला कर खेले खेल
2: बोल न पाइये गुणे अमूल
0: सर्व ज्योत में जाकी जो
2: सारे स्वामी ओत पोत
0: गुर प्रसाद परम का नाथ
2: नानक तिन में हो बसास
0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म
2: संत जना के हृदय सब धर्म
0: संत जना सुनो सब शुभ बचन
2: सर्व व्यापी राम संग रचन
0: चाहता तिस किए रहत
2: सत वचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख माने
2: कारण रावण हार प्रभ जाने
0: अंतर वसे बार भी ओही
2: नानक दर्शन देख सा मोही
0: आप सत किया सब सत
2: इस प्राप्त सलहि उत्पत्त
0: इस पावे ता करे विस्तार
2: इस पावे ता एक अंकार
0: कला लखी ना जाए
2: इस पावे तिस लय मनाए
0: कवन नित कवन कहिए दूर
2: आपे आप पर पूरा
0: अंतर का जिस आप जनाए
2: नानक जन आप बुझाए
0: सर पूता वर तारा
2: सर्व नैना पेखण हारा
0: सगल समग्री जाका तना
2: अपन जस आप ही सुना
0: आवन जानिक खेल बनाए
2: आज्ञाकारी की नहीं माया
0: सबके मद अलपत्रो रहे
2: जो किस कहना सो अपे
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
2: नानक जा पावे ता ले सुनाए
0: इते होए सो नाही बुरा
2: ओए काम के ने कछ करा
0: आप पला कर तू तकनीकी
2: आपे जाने अपने जी के
0: आप साच धारी सब साच
2: ओत पोत अपन संग राच
0: ताकि गतमित कही न जाए
1: दूसर होए तो सजी पाए
0: किसका किया सब परवान
2: दो प्रसाद नान के हो जाने
0: जो जाने ते सदा सुख होए
2: आम लाए ले प्रभु सोए
0: ओ तनवंत कुलवंत पतवंत
2: जीवन मुक्ति सृदे भगवंत
0: तन तन तन जन आया
2: इस प्रसाद सब जगत रहा
0: जन आवन काय हो स्वाव
2: जन के समचित आवे नाव
0: आप मुक्त मुक्त करे संसार
2: नान ते जन को सदा नमस्कार श्लोक
0: पूरा प्रभ आराध्या
2: पूरा जाका नाओ
0: नानक पूरा पाया
2: पूरे के गुण गाओ अष्टपदी
0: पूरे गुरु का का सुन उपदेश।

0: राम निट कर
1: सिमरो
0: गोविंद
1: अनित्या गोतरंग
0: मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: अगन सागर करो
1: हरतन के पर लियो पंडार
0: नानक पूरे नाम
1: सकार सहज आनंद
0: नरक
1: निवार उदारो जी
0: गोविंद
1: चित चित नारायण
0: एक रूप जाके रंग
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल सिमर सिमर नाम बारंग बार
0: नानक जी का हे आधार
1: उत्तम श्लोक साध के वचन
0: अमलीक लाल ए रतन
1: संत कमावत होत आधार
0: आप तरे लोके निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके माला का हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहद वाजे
0: सुन आनंद करे प्रभु जय
1: परते गोपाल महंत के माथे
0: नानक उदरे तन के साथे
1: करन जोग सुन सनिया
0: कर कृपा प्रवाह मलाए
1: मिट गए बैर पै सवरेन
0: अमृत नाम साथ संग लेन
1: सो प्रसन्न पै गुरुदेव और
0: होय सेव की सेवा
1: आल जंजाल बेकार ते रहते
0: राम नाम सा रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रवतार
0: नानक निविहे के पहारे
1: प्रभु की उस्तत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चित
1: सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम
0: ये मन से सोतन दान
1: सार इच्छा ताकी पूरन होए
0: वरदान पुरुष पर सब होए
1: सब ते ऊंच पाए स्थान
0: वरना होवे अमन जान
1: हरतन खाट चले जन सोए
0: नानक से प्राप्त होए
1: हेम शांत रिद नव निद
0: बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान से उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल पर गाल
0: सब ते मल सकल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समासे एक दृष्टि
1: ए पाल तिस जन के मुख पने
0: गुरु नानक।

आदि जगात स्वरूप सजम अमृचा मेरी तुम करो सिख वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उतपाता सकल मलेश करो रण कात जे अस्तु सब शरणी परे तिनके दुष्ट मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल कोई कवार ध्याए हैं ताके काल निकट नहीं है रक्षा होए

जो हमरे विद होती मेरे सतगुरु सब तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुरु सतगुरु संग की रे।

साहब साधनाय भाख्य भाव अपार आख मंग देह देह दात करी दातार फिर के अगे रखिया जि दिस दरबार मोह के बोलन बोलिया जिसन धरे प्यार अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवें जानी सब आपे सचार।

तक की तो सुनाई जियो, मेरा सार खींच तो मेरा सब दुख वाहे जियो। सतनाम श्री वाहिगुरु जियो, सतनाम श्री वाहिगुरु जियो। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते बड़ा सतगुरु नानक, जन कल राखी मेरे। सब ते बड़ा सतगुरु नानक, जन कल राखी मेरे। सो कहो डागर सेविया, निस सहज सवाए, दर्शन परस्या गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सो कहो टल गुरु से

रूप निवार है, सुख का मन साधर है, दर्शन भेद धूत निहला, हर का नाम विचार है।